अजूनी साहेबहंग गुरप्रसाद अनक जतन का रहे हर अंत नहीं पाया हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया रहा काम को लो मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रपालते हर भगत विश्वन आया प्रहलाद जन हर पकारया हर नाम की उतरा लियो तराया हर चेतरे मन मैल पाव सा दुख भंजन राया पौ जन्म मरण नवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हर हर उड़धारे जा नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सत संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाओ वड भागी गुर दर्शन पाया गुर मिलिए हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता धन धन साध जिन्हें हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता ललाड लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मनता राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सकल पाप गवाता राम रसायन जय गुरमत पाया तिनकी उत्तम बाता तिनकी पंक पाइए वडभागी जा नानक चरण पराता माली गौड़ा महला चौथा सब सिद्ध साधक मुन जाना मम भावनी हर ध्यायो अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी अलख गुरु लखायो रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो हरायो हर आन मिलायो सतगुरु खेन बंद मुक्त करायो प्रा मस्तके धुर लिखिया गुरमति हाले बलायो पंच शब्द दरगे बाजिया हर निर्मल मंगल गा हर मिलियो मंगल गायो पतित पावन नाम नर हर मद भागिया नहीं पायो ते गर्भ जूनी गाली है ज्यो लूण जले गलायो मत दे हर प्रभ अगमन ठाकुर गुर चरण मा

क्या नानक जंत विचारा, तू घड़कड़े अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बिडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन हबर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुकत पय जन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जन निरपहो जिन हर निरपो त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडहार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनका नेको अनंता, तेरी अनक करें हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़ै बो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जी बड़े अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे श्रेष्ठ सबो पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थी सी, जो तुम दे सोई हो पाई रहाउ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहे तन नामृतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया,

शर्मा। कवियो बाच बेनती जाओ पई पातशाह दसवीं, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण हो जिद की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा।

और भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाद है मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन भजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्द हो ता गावो हरि केरा मन जनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हे मानू मेरिया तू सदा रहो हर नाल हे हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार यो करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल सचे साहिबा क्या नहीं करते रह।

सची बाणी। संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित। सतगुर रहे आप हर पूरे, बनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे मुंदा बणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु

Namo ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, दंडौत वंदन कबार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ।

आगे मन मकरोए, दुआ सिद्धिया का खस में आपे, आपे गुण में पीजे, गुड़ के शब्द सदा जन सोए, नाम रसैन यो मन मोए, माया मोह मैल पतंग न लागे, गुरमति हर ना पीजे, सबना विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, होमे मां सदा सुख पाया, नाए सा

ना पी दे, मन कयां तर भगत न होई, गुरमुख भगत छान सुखर होई। पवित्र पाम सदा है बाणी, गुरमत अंतर भीजे, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी, त्रै गुण बदक मुक्त निरारी। गुरु ज्ञान एको है जाता, आंदे नाम रविजे, वेद पढ़े हर नाम न बुझे, माया कारण पढ़ पढ़ लूजे। अंतर मैं जग्ञानी अंदा, क्यों कर दुत तरीजे, वेद बार सवा खुबखाने, ना अंतर भीजे न सद बचाने। कौन पासा भेद लाया, गुरु कयम दीजे, आपे साचा एको सोई, तस्में दूजा अवर न कोई।

सुरचाया निरकरवस्या तिथे मोह न माया साडी साच वस्या काट अंतर गुरमुख करनी सारी है सच्चा सौदा सच वपारा ना दिते परम न दूजा पसारा सच तन खटिया कद तोड़ने आवे बूझी को विचारी है सचे लाए से जन लागी अंतर सौद मत कुमट फागे सचे स सदा गुण गावे सौरते विचारिये सचो सच्चा सच सदाई एको विका दूजा को नाई।

माया मोह दुख पारिये साचा सजना मन पाया पूर्ण लिखिया तिनी कमाया सचो सेवे सत्यावे साचरते विचारिये गुर की सेवा मिटी लागी आंदसु सह समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की से प्यारिये से जन चुके सतगुर सच्चे लाए अपने पानी आ मलाए सतगुर राखे से जन उभरे और माया मोख वारी है गुरमुख साचा शब्द पछाने ना गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिजकता मुना तिस माता एको एक रव्या सवयंतर सबना जिया का आधारी है हमें मेरा दूजा पाया किस न चले तुर खसम लिख पाया गुर साचे ते साच कमावे साचे दुख नवारिए जा तू नहीं सदा सुख पाए साचे सब दे साच कमाए अंदर साचा मन तन साचा पार ते पंडारिए आपे वेखे हुक्म चलाए अपना फाणा आप कराए नानक नाम रते बेरागे मातन रचना नाम सवारिए मारू मोहला तीजा आपे आप उपाए अपना समय बटे आप प्रछन्न सबना सा करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु मेष उपाए से ठंडे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरमुखी को जाता है आवा गौण है संसार माया बहुत चितवे बकारा थे सलाई।

समय बढ़ते एक कोश होई, गुरु प्रसाद जी प्रगट होई, सबना प्रित पकार करे जग जीवन, दिन दारी सुबाई, पूरे सतगुर बूझ बजाया, हुक्म ही सब जत पाया, हुक्म मने सोई सुख पाए, हुक्म सिरसा पासाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तेरे शब्द निसरे संसारा, आपे करता कर कर वेखे, देंदा सास गुराए, कोड मरे किसे बजाए, गुर के सर ते रंग लाए, हार सलाए सदा सुख दाता, हर भक्त से पद सलाए, सतगुरु से भी से जन साची, रूमर जमे काचन काचे, अगाम

अरुर गुरु जापे सबदे सिउ सबदे सिवी सो जन थापे आनंद सिवी सच्ची बाणी सब सच्ची उमाय अज्ञानी अंधा भव करुण लड़ाई मनट करम फिर जोनी पाई विख्या करना लोक मावे जुर्मत का दूरा आए पूरा सत गुर पद लड़ाई गुरु के सौदा नाम जित लाई मन तन हर रविया काटे अंतर मन पी

जग लाए सचा मुसब सुहाया पंज साध मिलो बाजा बाया सदाकार सतनाम शीला मैं सबने कार्य के आए किन में हसे किन में रोवे दूजी दुर्मद कार्य न होवे संजोग जो करते दुख पाए खेत न चले चलाए जीन मूद गुरसा दुख माए हाजो साधी रहे समाए गुर कृपा ते मुनि वडियाई होमे रोग न ताए रल खाए पिंड वडाए पे करे गुरसा न कमाए अंडा रोग मां दुख पारी बेटा महासमाए समाए वेद पढ़े पार बाद बखाने काटू में ब्राह्म ते शब्द ना पहचान गुरों ए सुता तब लोवे रसना हर आताए करवा छोड़े बार थावे मन कंधे साध न पावे अन्न रस राटी रसना फीकी बोले हर रस मूल न ताए मन को दे परम पटारो दुनत मरे तोय खुवारो का क्रोध मन दूजे लाया सुपने सुख न ताए कंचन दे सद पटारो आंदन पो भोगे हरसों प्यारो मैल अंदर गैर मैल पाए पाणा बोस माए आपे देवी देवनारा तिसे आगे नहीं किसी कचारा।

पान पान नमो मान मान नमो चंद्र चंद्र नमो पान पान नमो गीत गीत नमो तान तान नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पान नमो बहाद बादे रंगी नामे समस्ति सरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते क्रंक बनाने क्रंक ही स्वरूपे नमो राज राजे संग परम रूपे नमो जोग जुगे सरम परम सिद्ध हे नमो राज राजे संग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाण हे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखी परमी भोगी भुगते नमो जोग जुगे सरम परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्म हे नमो प्रेत प्रेदे विश्व धर्म नमो रोग हरता नमो राग रूप हे नमो शाशाक नमो भू भूपे नमो दान दान नमो मान मान नमो रोग रोग नमस्तंग शनाने नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सरं प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद करता अदो उर्द अर्दं अगुं ओघरता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं आचे दीपे दीनामं कामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी शांद जले है थले है पीतै पेह है प्रभु है जू है देश है भेस है भुजंग प्या छंद अगाधे अबाधे आनंदी सरूपे नमो सर्वमान्य समस्त निधाने नमो देव देवे अपेखी पेवे नमो देव देवे अपेखी पेवे नमस्तु नरनाथे नमस्तु परमाथे नमस्तु गंजे नमस्तु पंजे नमस्तु काले नमस्तु पाले नमो सर्वदेश नमो सर्वपेसे नमो राज राजे नमो सासा जे नमो शाशाह नमो माहि नमो गीत गीत नमो प्री प्रीत नमो रोग रोग नमो सोग सोग नमो सर रोग नमो सर भोग नमो सर जीतंग नमो सर पीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परम तहानंग नमो सर मंत्रंग नमो सर जंत्रंग नमो सर दृसंग नमो सर कृसंग नमो सर रंगे दृपंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे खिजे भिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरपड़ छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे अखल धर्मंग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआ शांत प्रसाद

कामे पुजंग प्या शांदु चत जगर करता चत जगर हरता चत जगर धान्य चत जगर जान्य चत जगर भरती चत जगर भरती चत जगर पाले चत जगर काले चत जगर पासे चत जगर वासे चत जगर माने चत जगर धान्य जाचरी शांतन सत्रण मित्रण परमुन पितरण कर्मंग न काय जन्मंग जहाय ना चित्र है ना मित्र परे है पवित्र पृथ्वी सदिश दृश गृश भगवती छंद प्रसाद कथ ते के अच देस के अपज पेस के अगन कर मै के अपने पर मै के अपज लोक के अद शोक के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजंग पर बाह के धर्मंग तो जा है के शोक वर्ण के सर्वा परन के जगतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपोनूप है के आदु अदेव है के आपू अपीब है के चित्रंग भी न के कदी न करो जिरजा कर ही मर कह के पाक बेअब है के गैबल गैब है के फुल गुणा है के शान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज करहीम है के कर्म करीम है के सर्वंकली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र धान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्व पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्व पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्व पेश है के सर्वत्र मान्य है सदा प्रधान्य है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र भन है के सर्वत्र मन है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परम भीम है के अकल अलाम है के सर्व कलाम है के हुसन वजू है तमाम रुजू है हमें सुल सलाम है सलीकत मुदाम है अग्नि मुस्कस्त है गरीब प्रस्त है बुलंदर मकान है जमीन जमान है गरीब गरीब प्रस्त है बुलंदर मकान है जमीन जमान है तमी जुल तमाम रुजुल धन री फुल जी मर जाक यकीना ने कुल तरंग है भेद है पंग है जी जन वाज है ग्रिमुख राज है नृत स्वरूप है त्रिमुग विभूत है पर भुगत प्रभा है सो जुगत सुदा है सो जुगत सुदा है सदैव स्वरूप है भेदी नूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदा वल काम है निर्वास रूप है अगाध है नूप है ओंगाध रूप है नास रूप है नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाम में त्रिवर्गंग त्रिभा दे अघंज अगा दे सुभंग सर्भाग्य सो सर्भान रागे त्रिभग स्वरूप है छज छूत है नरकं प्रणास है पृथ्वी प्रभास है निर्गत प्रभा है सदा एवं सदा है बेभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है बेभुगत प्रभा है नुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है जात्री छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है जय है वह पूत है धूत है नास है उदास है धंद है बंध है भक्त है भक्त नास है प्रकाश है सुनिश्चिंत है सुनिंत है अलेख है दिख है लेख है पेख है गाह है अडाह है अनाद है अलेख है पेख है अडाह है गाह है संभ है गंभ है नील है नाद है अनित्य है सुनित्य है जात है अजाद है चरपुट संत प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग घंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता सर्वं शांत प्रसन्न मनर्क नासे सदा एवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाथे गात स्वरूपे निर्बाध भूते रंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न परमं न पितर ना सत्र न मित्र न दातन मातन जातन पातन नरसाकं श्री कह मे तो मी कह सदा एवं प्रभाव है जय है अजा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर हजूर है के हाजर हजूर है मेसर सलाम है समसर कलाम है के साहब दिमाग है कुशल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज गृहिंद है गरीम कुमार है के सुन जमार है गरीम खराज है गरीम नवाज है हरी फुल से कन्न है रसरफ कन्न है कलंकंग प्रणास है समस्त निवास है गंजल गनी मरिजा करहीम है समस्त जुबा है के सैब करा है के नरकंग प्रणास है व्यस्त निवास है के सर्व गवन्न है मे सर्वन्न है तमाम तमीज है समस्त अजीज है परम परमीस है समस्त अधीस है अधेश ललेख है मे सलपेख है जमीन जमा है मे कुल माह है करीबन कुमाल है के जुर्त जमाल है के चलंग प्रकाश है के मे तो सुभाष है
कि मित्तो हूँ, कि अज विस्वरूप है, कि मित्तो विभूत है, कि मित्तो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि चलंग नंग है, कि मित्तो भंग है, मत भाषण तो प्रसाद। मुन मन प्रणाम, गुण गुण मुदाम, हर पर गंज, हर नर पर भांजू, अन गुण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर खंड, बंदर मांड, अन पवनास, मुन मन प्रकाश, गुण गुण प्रणाम, जल थल मुदाम, अंश जंग, आसन भंग, उपमा पार, गत मित उधार, जल थल मंड, दिस भंड, जल थल महंत, दिस बेअंत, अन पवनासु, तीर्थ तुरासु, आजान भाव, एक सदा हो ओंकार, आदि कथनी नाद, खलखंड ख्याल, गुरवर काल, कर कर प्रणाम, चित्त चरण नाम, हंस जि गातो, जज न बातन, झंझ गात, निरंज बातो, अंठट पंडार, अंठट पार, वडीठ धर्म, अटीठ कर्म, अनवरणंत दाता महंत, हर बोल मना संत प्रसाद, करनाल्या रकाल्या है, खल खंडन है, मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व वारण है, तिथि के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास है, सर्व नास है, करना कर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर जगदेश्वर ब्रह्मंड सह खल खंड सह परते पर है, करना कर है, जपा जप है, थपा थप है, कृता कृता मृता मृत है, मृता मृता करना कृत है, कृता कृता धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, मृता मृत है, अजवा कृत है, मृता मृता निर्णायक है, कलकायक है, विश्वंभर है, करनाल्य निरपनायक है, सर्पायक है, पपंचन अर्गंजन है, तपन है, जप जापन है, कलंकृत है, सर्वा कृत है, कर्ता करें, हरता हर है, परमात्मा सर्वात्म आत्मवास है, जस के जस है, भुजंग प्या छंद, नमो सूर्य सूर्य हे, नमो चंद्र चंद्र, नमो राज राज, नमो इंद्र इंद्र, नमो अंधकार, नमो ते ते, जनम बृंद बृंद, नमो बीज बीज, नमो राज सिंह ताम सिंह शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्यान, नमो युद्ध युद्ध, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो पूज पूज, नमो पान पान, नमो कला करता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादं विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो वास वास, नमो बांक बांके, भंगी स्वरूपे, नंगी नामे, त्रिभंगी त्रिकाले, नंगी कामे, कशी छंद, जय लय भै भै, पूजो नास कास, अगंज पंज लख पख, काल दयाल, लेख पेख, नाम काम गाह डाह, नाथे परमाथे, जो नी मोनी, नरागे नरंगे, रूपे रेखे, करम परम गंजे लेखे, भुजंग प्या छंद, नमस्तल प्रणामे, समस्तल प्रणासे, अगंजल अनामे, समस्तो निवासे, निरकामं विभूते, समस्तल स्वरूपे, को कर्मं प्रणासी, सो धर्मं विभूते, सदा सच्चिदानंद, सदरंग प्रणासी, करिमुन कुनिंदा, समस्तो निवासी, जय विभूते, जय विघ्नि में, हरियं करियं करिमुरिहि में, चत्तर चक्कर वर्ती, चत्तर चक्कर भोगते, सुजं भव शुभं सर्वधा, सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, को ओंकार सतगुरु प्रसाद, तो प्रसाद सोइए पातशाही दसवीं, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, देख फिर कुर जोग जती के, सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्धादिक, संत समूह ने कमती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को ना देखित प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रत्ती के, मत मतंग जर जर संग, अनुपो तंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूद पौन के, घर को जात निवारे, पारी पूजान के, भूप पली बिद, न्यावसी न जद बिचारे, इते भय तो कहां भय, भूप तंत कुरंग पाए पधारे, जीत फिर सब दे दिशान को, बाज तो ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के, सुंदर हिंसत है राज हजारे, भूत भविख भवान के, भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे, श्री पा श्री पवन भजे बिना अंत को अंत के, ताम सिधारे, तीर्थ नानू दया दम दानू, सो संजम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेव कुरान, जमीन जवान सबान के पेख है, पौन आहार जति जत तार, सब सो विचार हजार के दिखे,

जाच कन्हे एक सो एक दवैया दानव देव निंदन साचर भूत भुख भुहांज पैंगे जीव जित हे जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपैंगे पुन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के बो पुंज खपैंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सवह अब लोक जपैंगे मानव इंद्र गजिंद्र नरहद भजंतर लोको राज करेंगे कोट नानक जात गदहन अनेक सोमबर साज बरेंगे ब्रह्म हेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे न श्रीपत के प्रसै पग ते नर फिर न दे तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो भगत्यान लगायो नत फिरो लिये सा समुंदर लोह गयो पर लोह गवायो बस कियो बख्यान सो बैठ कै से ही ऐसे सो भैस बतायो साच कहूं सुन लियो सवैजन प्रेम कियो तनि प्रपायो काहू लै पान पूज धरो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लखर वाच दिशा मैं काहू बचा को सी सनवायो कोहु बुतान को पूजत है पास कोहु मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कवो वाच बेनती चौपाई पास छे दसवीं हमरी करो आदर इच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारम हमरे दुष्सवा तुम कहबो आप हाद मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर छानज करदै करे है सबैरन को आसंघरे पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम शाड कोई वरना त्याऊं जो बर चहूं सतुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारी मारी है आप हाथ दे मुझे उबरे है मरण काल का त्रासन वरिया हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्त जुजु करियो रच्छा राख लेहो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे।

तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह वेद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुप सुरूपा रंग पहो राव के भूपा अंड जिर से तजगिनी तुभज खान बहो रचदीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सिर दिखाए चंपवा जुगा सुरू श्यम पाव। अबर छा मेरी तुम करूं सिखो बार सिख संघरम, दुष्ट जेते उठ बत उत्पाता, सकल मलिश करो रण खाता, जे हस्तो तब शरणी परे तिनके दृढ़ दुख हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकटने आए हैं, रक्षा होए ताही सब काला। दुष्ट रिष्ट ट्रेंदत काला, कृपा दृढ़ तन जाय निहार हूं, ताके ताप तन को हर हूं, रिसिद करमु सब होई, दुड़छा छवैस कहना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते तहि उबारा, जिन नर नाम त्यारो कहां दार्द, दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी।

आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां वाधाहियां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द हो ता गावो हरि के राम हंजनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदारो हर नाले हर नारो तू मन मेरे दुख सब सारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदारो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कन्हेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिट हो जिस दियां इह वडियाईयां कहे नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जन को से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख आदित कर अनहद बाजे साचे लिवै बंदे निमाणी दे निमाणी देवै बाजो क्या करे बिचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बन बारिया सुनो थाउ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजू क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मुँह तुटा तिनका शब्द च सवारिया कहे नानक आनंद आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनों होर क्या करे बेचारिया एक भरम भूले फिरै दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे।

कथ की करै कहानी, करै कहानी कथ के रीकत द्वारे पाईऐ। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिया पाईऐ, हुक्म मनियो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी, ये मन चंचला चतराई किने न पाया, चतराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जनेत परम भुलाया, माया ता मोहनी तेने कीती जन ठगौली पाईया। कुर्बान किता तिसै भेटो जन्मो मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, हे कुटुंब तू जे देखदा चल नहीं तेरा नाले, साथ तेरे चलै नहीं तिस नाल क्यों चित लाइया। ऐसा कम मूले न कीचै जित अंत पछोताइया, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगमो गोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किन तेरा, अपना आप तू जाने, जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख बखाने।

हुक्म आए, सहसा जीव मलीन है किसने धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो हर सुन रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा बजाए। जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता मैले, तिनी जन्म जुगै हारिया तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनहै नाही, फिरै ज्यों बितालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे, तिनी जन्म जुगै हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जा दे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु से ती सरम को होवै, होवै ता सरम से कोई जीव रहे गुरु नाले। गुर के चन हृदय ते अंतर आत्मा संभाले। आप छड सदा रहे परन गुर बिन अवर न जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनम को होए। जे को गुर ते बेमुख हो वह बिन सतगुर मुक्तन पावे, पावे मुक्तन होरथ कोई पुछो वे किया जाए। नेक जोनी परम आवे बिन सतगुर मुक्तन पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्तन पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी बाणी त गावो गुरु केरी बाणी असर बाणी। जिन कौ

कर्म कमाया, के कर्म कमाया तो श्री राजा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न बसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक ये शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु से जित लाया, नित्रो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत रही। हर बिना वरना देखो कोई, हर बिना वरना देखो कोई, नदरी हर निहाले आवे संसार तुम देख दे। हर का रूप है रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा रे एक है। हर बिना वरना कोई, कहे नानक नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव दृष्ट होई। ये श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नु पठाई।

कहे सितंबर स्वामी सच में आशय साच रहे सब कुछ सच समावे। हरेक कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लय पराशत जाए।

अंतर ज्ञान है। आपां गुरु दी शरण दे विच अंतर अंदर दा ज्ञान लैण आउने आ, अंदर दी सोझी लैण आउने आ, अंदर दा रास्ता पुछण आउने आ, अंदर तीर्थ दी जानकारी ले।

जे रहे समाए, वो अंदर रहते ने, वो अंदर दी सोची थे, अंदर दा भेद, अंदर दा ज्ञान रखते ने। महाराज ने सारा भेद खोलिया होया, महाराज ने पर्दा लाया होया, वो संसार च भी खेड़ते ने, संसार दे विच भी विचरदे ने, ते खा उन्हां ते असर नहीं करदी। तृष्णा उन्हां दा बाल बिंगा नहीं कर सकदी, उन्हां नूं मालक दे नालों बछोड़ ते तोड़ नहीं सकदी। जिन्हां नूं महाराज बख्शिश कर दिंदा, ये रस दे नाल

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई।

सब कमाई सब कछ तिस दै बस दूजी नाहे जाए। नानक सुख अंद पै प्रभ की मन रजाए। गुरपुरा जिन सिमरिया से पै निहाल। नानक नाम अराधना कर जिया बहरास। पापी कर्म कमाम दे कर दे हाए हाए। नानक ज्यों मथन माधानिया त्यों मथे त्रम राय। नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत। नानक धर्म ऐसे चव है की तो पवन पुनीत। खुबड़ी कुथाई मिठी गलन कुमंतरिया। नानक से ही उबरे जिन्ना पाग मथाहे। सुतड़े सुखी सवन जो रत्ते सह अपने। प्रेम बिशोहा तनी सौ अठे पैर लवन। सुतड़े असंख माया झूठी कारनी। नानक से जागन जी रसना नाम उचारणी। मृग तिसना पेख पुलने उठे नगर गंधर्व। जिन्नी सच अराध्या नानक मन तन फब। पतद उदारन पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार। जिसै उदारे नानका सो सिमरे सिर जनहार। दूजी छोड़ कवाटड़ी एक सौ चित

राग एक संग पंच बरंगन, संग अलापै अठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करी, पंच रागनी संग उच्चरही। प्रथम पैरवी बिलावली, पुनिया की गावै बंगली। पुन असलेखी की पही बारी, हे पैरों की पंचो नारी। पंचम हरख दिसाक सुनावै, बंगाल मद माधव गावै। ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत। अष्टपुत्र पैरव के गावै गायन पात्र। द्वितीया माल कौसक आलापै, संग रागनी पंचो थापै। गुंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पंचो गाई, मादरा कौसक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौसक ओ भारा। खौ खटे ओ भौरा नद गाई, अष्टमाल कौसक संग लाई। पुन आयो हिंडोल, पंच नार संग अष्ट सुत। उठै तान कलोल, गायन तार मिलावई। ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहिरी लै पार जा, संग लाई पंचो आर जा। सुरमानंद

दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।